जनता के बस कुछ ना इंतजीर के लिए तो पाया इतना ना तुम्हें लला का पुत्र दुखवाया वो कृपा दे जाने सहजे ही सत समाया सहजे ही सत।

0: जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझेता ही सत जुग रथ संतोख का धर्म ग्रथ वाहो प्रीति रथ जते का चोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ वाहो कल युग रथ अग्न का पूर्ण ग्रथ वाहो मल्ला पहला
1: साम कैसे तुम्बर स्वामी सत में चे सच रहे सबको।

0: सबको नेवे आपको पर को नेवे ना कोई तरत राजू तो निये अपराधी दुना निवे जो अंता मर गाए शिष निभाए क्या थिए देख सुते जाहे मुखा पंडा
1: पर पुस्तक संध्या वद सिंधु सुब समादन मुख चूज भूखन सार त्रिपाल ते हाल विचारन गलमाला त्रिकलाटन धोती वस्त्र फाटन जय जान स्मरण कर मन सखो अपने चुकन कह नानक ने चुधावे मन सतगुरु बाट न पव पड़

मत शर्मिंदा थीव ही साईं दै दरबार, मत शर्मिंदा थीव ही साईं दै दरबार। बेशुमार अथा अगणत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।

फिर अगलियां पंक्तियां विच गुरु साहब कहिंदे हर हर नाम मेरा मन वसाई, रब जी का नाम मन विच वस गया, गुरु की बरकत सदका, गुरु की बख्शिश सदका, हुण सब दुख विसारन हारा। जे अज आपां ना समाज विच किसे नूं पुछ लो तेरा मन दुखी है, ते शायद 100 दे विचों एक बंदा कवे नहीं, शायद वह भी नहीं, तो 100 दे 100 ही कहणगे जी वाकई दुखी है। जिस दिन जिदा दे दिन ब दिन हालात बन जाते ना जी, उस हिसाब नाल हजारां विचों भी एक लभना मुश्किल हो जाना है भी मन तेरा सुखी है। हजारां विचों भी वह भी कहेगा नहीं जी मन कित्थे सुखी हुंदा जी, तुसी दसो जी मन च मन करके सुखी कौन है। ते इस गल दी मोर बापू नानक जी ने बाणी विच लाई है, बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मालिक ने एक नूं भी नहीं कहा, सतगुरु ने सब संसार की गल की, सारा संसार ही दुखी है। इहदा मतलब हजारां विचों भी एक लभना मुश्किल है जिहड़ा यह आखे भी मेरा मन सुखी है। हुण सतगुरु कहिंदे जदों मन विच नाम वसदा है, वह नाम की करदा है? नाम की करदा है? गुरु अर्जन साहब नूं पढ़ो, सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, नामा करदा जे। कल कलेश तन माहे, तन दे विचों, तन दे विच की है? मन। कलेश कित्थों मुक्कणगे? शरीर थोड़ी कलेश करदा, कलेश ते मन करदा। शरीर नूं ते पता ही नहीं है कलेश की है, विचार ते अंदरों मन कहिंदा इहदे नाल लड़, शरीर लड़न लग जांदा है। मन ने कहा जिहदे नाल झगड़ा पाउणा है, तुसीं कदे वेखो जदों झगड़ा कर लईदा ना फिर मन कहिंदा जी माड़ा कीता। हुण शरीर दा ते रोल सी भी उहने कर लिया, क्या किन्ने क्रोध पैदा कि तन विच, कदे क्रोध पैदा होया जी? क्रोध मन विच ही पैदा होया ना, वह मन विच पैदा क्रोध होए ने तन नूं तोड़ लिया। ऊर्जा ते मन दी सी, हुण मन दी ऊर्जा ने तन नूं तोड़िया, तन तुरिया लड़न वास्ते, मन दी ऊर्जा भी गई शरीर दी ऊर्जा भी गई, दोवें खत्म हो गईयां। जे मन विच ही कलेश ना हुंदा शरीर किवें कलेश कर लैंदा? जे मन विच ही क्रोध ना हुंदा शरीर किवें लड़ पैंदा जाके? जे मन विच ही ईरखा ना हुंदी शरीर निंदिया क्यों, जुबान निंदिया क्यों करदी? मन ने क्या इहनूं माड़ा कह, यह माड़ा है कह, मन कह रहा है। हुण अंदर विचार मन दे, आपां जो अंदर पैदा हो रहा बोली जाता, जो अंदर पैदा हो रहा बोली जाता, पैदा कित्थे हो रहा? मन। शरीर च कुछ नहीं जे पैदा होंदा, जो होंदा मन विच होंदा है, जो पैदा होएगा मन विच पैदा होएगा। यही मन, मालक कहिंदे जदों हर हर नाम मन वसाई सब दुख विसारन हारा, कल कलेश तन माहे मिटावौ, मन दे विच्चों मिट जांदे ने कलेश जदों मैं सिमरदा हाँ, क्योंकि तन ने नहीं सिमरना ते मन ने है। फिर सिमरौ जास विसंभर एकै, नाम जपत अगणित अनेकै, वेद पुराण सिमृत सुधाख्यर
कीने राम नाम एक आखिर किनका एक शरीर है जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक है दर्श तोहारो नानक उन संग मोहे उदारो। फिर पढ़ो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै किथे है मन विश्राम नने नु सियारी मन विच टिकाव है रब्बी प्यारियां दे मन विच टिकदा है। की अमृत नाम केड़ा

दोहरा आज्ञा पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिल वोच है। राज करेगा खालसा,

पंथ सब सिखन को कमै गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरहा की जो प्रभ को मिल वोच है खोज शब्द में।

मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरियारे, गुर नानक जिन सुने पिखिया से फिर गर्भास ना परिया रे।

रात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बायसनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बट भाग वडेरे जैनो हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सहे मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जना हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जनते उपाय ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोई न किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया ऊड़े ऊड़या वै सहगों सा तिस पाछे बचरे शरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहें सब त्यावहें तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पर ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावहे हर त्यावहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जेना हर त्याया

तेन टूटी जमकी फांसी। जिन निरपो जिन हर निरपो ते आया जी, तिनका पो सब गवासी। जिन से वेया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तब तपहें जपहें बयंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जे बड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तूने चल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई। रहो सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिंदु जा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खे, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी में। जिसनों तू जाना है, सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिंदु जा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सर्व रड़े भाईरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चले, हम दिखा तह डूबियले। मन एक ना चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलिया। रहो ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम। मेल साध संगत भाज केवल नाम। श्रंजा लाग पो
भव जल तरन के जन्म प्रथा जात रंग माया के रहो जब ताप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जन्या हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जब तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चाओ पाई हमरी क्रोहा दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो आभात दे महे बचाबो हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबे रिन को आय संग्रिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो वर चहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिखा मार तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आभाद दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्त जो करी हो रक्षा राख लियो मोहे रखण हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन मन दुष्टन के हंता तुम्हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आधे अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजाज ने आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कटकट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बछने कट कट के बड़ बड़ की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तव देहे अपारा जब आकर्ख करतो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपणी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम
निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीन अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत पेदा जाको पीवरा पावत बेदा ताको कृपाहण अनुमानित महामूढ़ कछ पेद ना जानते। महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न है पिव आप आपणी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विध सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज रसे तज कीनी उतपज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंप अजुग स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे अस्तुजे तब शरण ही परे तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल कृपा दृष्ट तन जहे न हरेओ ताकि ताप तन कमाए हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शहा शवाए सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसती ताहे ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओ बारी सर्वठ हो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।

हो ओ बारी सर्वठो मो हो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया मैं गहे जबते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखने दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद अनंत भयाव मेरी माए सतगुरु मैं पाया सदगुरु ता वाया सह सेती मनवजियां वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी के राव मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नारे सच साहेबा क्या ना ही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन नवसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहे क्या नही घर तेरे सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां एह वड़ियाइया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंश तित कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ
तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुण हो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुरी कहते पवित सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नहान गुर चरण लागे वाजे अनहाद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर भूरे

मुंदामणि महला पंजवा थल बिच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंछै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नाने गए ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सत

जपे जाको ओट तोहारी हर बिसरत सदा खुआरी ताको तुखा कहाँ बे आपे जाको ओट तोहारी राहु बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी गुण निधान गुणत नहीं गाय जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निधान गुणत नहीं गाए जाको।

महाराज जी ने महाराज नू यह बर्दाश्त नहीं होया भी ये हंकार तुहानू किते लैके ना बैठ जाए। जिन्हां नाल तुसी लड़ रहे हो वह भी तो हंकार दे रोग नाल ही भरे हुए ने, होमै दीर्घ रोग है। तो जे तुहाडे अंदर भी हंकार आ गया फिर दोवां च फर्क की रह गया, फिर दोवां च फर्क कुछ नहीं है, वह भी हंकारी थे तुसी भी। फिर सतगुरु जी ने उन्होंने बुला के उन्होंने अंदर जड़ा रोग शुरू ही होया सी उदो ही महाराज ने उन्होंने वचन विलास करके उन्होंने दूर कर दिता। सतगुरु महाराज ने अपने सिंगा उत्ते कृपा

तित नाम रसक नानक लहणा थप्यो जैन सर्ब सिद्धि कव जन कल सबुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण है पूब अर पश्चिम जय

शिव सन काद समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भव जल तरिया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर्व सांझी वालता दे रहबर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, चबर और तख्त मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जियां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियां हाजरियां लगवा रहे हाँ। सो जो सतगुरां ने सानू सभना नू पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म बिलावल राग दे अंदर शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, प्रेम दी मूरत, पंजवें पातशाह, धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जियां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर 813 और 814 अंग दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं किहड़ियां बेशकीमती दातां दे नाल सानू निवाजना करदे ने, आओ प्रेम सतिकार वैराग दे विच भिज के